सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 5 जुलाई 2026 रविवार, आषाढ़ पंचमी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:29 पर।

बच्चे के रोने की कोई भाषा कोई मजहब नहीं होता है। आधार घड़ते हो खुद ही और फिर चल निकलते हो अभिमान और नफरत करने के लिए। मालिक ने कहां पर बनाए हैं कोई चिन्ह कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ब्राह्मण है।

FM 90.0 MHz रेडियो विशेषता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ गाओ चले एपिसोड 12। आज का कार्यक्रम आधारित है गाओ फलेल माजरा अंबाला पर। प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपुरी, राज्य सरकार के पीएचई विभाग के अमित खोसला, सुनील कुमार एवं रविंदर कुमार के उपस्थिति में कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। इस समय हम अंबाला के गांव में आए हैं जिसको हम फ्लेल माजरा के नाम से जानते हैं, और हमारे पास राज्य सरकार के पीएचई डिपार्टमेंट के अधिकारी भी साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पर सबसे पहले हम जो गांव के सरपंच है श्री विजय कुमार जी, हम पहले उनसे बात करेंगे, गांव के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गांव किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या यहाँ पर अच्छी चीजें हैं, और अगर कोई कमी भी है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गांव के सरपंच विजय कुमार जी के साथ। विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम आओ गांव चले में। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन संक्षिप्त सा बताएं।
1: सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार
0: जी।
1: नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं गांव फ्रेल माजरा से सरपंच हूँ। मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन है, जो कि मैंने एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट से पास आउट किया है। 2016 से मैं गांव फ्रेल माजरा का सरपंच हूँ
0: जी।
1: फर्स्ट टाइम 2016 में मैं सरपंच बना था, उसके बाद गांव वालों ने दोबारा मौका दिया
0: जी,
1: तो मैं दोबारा सरपंच बना। अब मैं लगातार दूसरी बार सरपंच हूँ। हमारा एक छोटा सा गाँव है हमारा, और बहुत ही प्यारा गाँव है
0: जी।
1: ज़्यादा घनी आबादी वाला मेरा गांव नहीं है, लगभग 1200 के आसपास हमारे यहाँ पे जनसंख्या है, और 800 के आसपास हमारा वोटर्स है यहाँ पे सर।
0: गांव फ्लेल माजरा में।
1: गांव फ्लेल माजरा
0: जी। इसके आसपास के जो गांव है वो कौन कौन से हैं?
1: मेरे आसपास जो है, हमारा जो बस स्टैंड लगता है, जिसको आप जी गाँव की लैंग्वेज में कहते हैं कि आपको बस कहाँ से मिलती है
0: जी जी,
1: है ना, वो मिठापुर है। मिठापुर से हमें बस मिलती है। अब जो हमारी बीजेपी सरकार ने तो काफी फैसिलिटीज कर दी है कि बस हमारे गांव से भी होकर निकलती है
0: जी।
1: पर पहले अगर देखा जाए तो हम लोग मिठापुर से बस पकड़ते थे। जैसे कि मैं अगर अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम की बात करूं तो हम लोग मिठापुर से बस पकड़ते थे। मेरे गांव से अगला गांव अकबरपुर है, उससे नेक्स्ट संभालका है, फिर धुराड़ा है, चुडियाली है, चुडियाला है, और ये मेन रोड सीधे जाकर दिल्ली हाईवे को टच करता है।
0: जिस गाँव के सरपंच, आप फ्लेल माजरा गाँव को ही देखते हैं
1: जी,
0: जो आसपास के गांव हैं उनके सरपंच अलग होंगे,
1: बिल्कुल,
0: पर फ्लेल माजरा के सरपंच आप हैं
1: जी। जी बिल्कुल।
0: हम यहां पर आज एक खास मकसद से आए हैं, और हमारा मकसद है कि आपके गांव में पानी की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, वो ये कि आमतौर पर जब हम किसी भी सरपंच से मिले हैं, वो सरपंच जो है वो ज्यादा एज के होते रहे हैं, आप एक युवा सरपंच हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके सरपंच बनने से फ्लेल माजरा गांव में क्या क्या तब्दीली आई, क्या क्या बदलाव आए, क्योंकि हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब युवाओं के हाथ में कोई भी कार्य होता है और वो किस तेजी से आगे बढ़ता है, वो उन्नति क्या करता है।
1: देखिए, इस बात के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा ऋणी भी कहूंगा अपने आप को, और मैं एहसान ही मानता हूँ सरकार का कि जिन्होंने युवाओं को मौका दिया ताकि वो आकर अपने क्षेत्र की बागडोर संभाले, अपने क्षेत्र में काम करे। क्योंकि राजनीति में अगर आना है तो उस इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। उससे पहले तो अनपढ़ आदमी भी सरपंच बनते थे, उनको नहीं पता था गांव में क्या विकास करना है। ग्राम सचिव होते थे, वो उनके अकॉर्डिंग ही चलते थे, पर जो पढ़ा लिखा पर्सन है वो गाँव का विकास करे, और वाकई उस चीज से विकास हुआ है। हम जब ब्लॉक्स में जाते हैं अपने, जहाँ पे सभी सरपंच इकट्ठे होते हैं, ये मेरा मानना है अपना, ग्राम सचिव जो बोलते थे सरपंच उसको मानते थे और वैसे ही काम होते थे। अब सरपंच पढ़े लिखे हैं, वो अपनी समझ से अपने गांव का विकास कर सकते हैं। हमें जिस चीज की जरूरत है गांव में, पहले हम उस काम को प्रेफरेंस देते हैं।
0: आप कितने साल से इस गांव के सरपंच हैं?
1: अगर मैं आज की बात करूं तो आज मुझे लगभग पिछले 5 साल, फिर 2 साल बीच में पंचायतें नहीं रही, तब भी सरपंच कार्यभाग
0: जी,
1: और 3 साल और आगे तो 10 साल लगा।
0: चलिए, अगर हम 5 साल भी मान के चलते हैं जो कार्य का समय रहा है, आपके कार्यकाल में गांव ने क्या क्या ऐसी उन्नति देखी जो गांव वालों के लिए जरूरी थी?
1: देखिए सर, नालियां गलियां जी, ये तो आम सी चीज है कि वो जरूरत है इंसान की।
0: विजय जी, मैंने आपसे ये पूछा कि आपके सरपंच होते हुए आपके गाँव में, आपने कहा कि नालियां सड़कें बनी है, कोई ऐसा कोई बड़ा काम किया जो आपके समय हुआ?
1: कुछ चीजें ऐसी होती है गांव की, बड़ी जरूरत होती है और उसकी तरफ लोग

0: तो मैं लगातार 10 साल से उस मुहिम में लगा हूं। आज मैं कामयाब भी हो चुका हूं। मैंने उस जोड़ को फिल किया, मैंने उस जगह की चारद्वारी की और आज मैं उसको एक सुंदर पार्क का रूप देने जा रहा हूं।
1: आपको हम साधुवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम गांव में जाके गांव की तरक्की देखते हैं, हमारा मकसद केवल यही होता है कि जो हमारे श्रोता है, जहां तक हमारे सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो व्यवस्था की आवाज जाती है, वहां पर ये आवाज जाए कि जब एक गांव अपने गांव को साफ सुथरा रख सकता है, स्वच्छ बना सकता है, तो बाकी गांव के जो सरपंच या मुखिया हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं। अब हम मेन मकसद पे आएंगे जिसके लिए हम आज आपके पास आए हैं।
0: जी जी।
1: हमारे पास हरियाणा सरकार के जो PHE डिपार्टमेंट के अधिकारीगण है वो भी साथ हैं।
0: जी।
1: उनके समक्ष मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपसे सही व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है जो इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। पहला प्रश्न ये है कि क्या आपके गाँव में नल से जल हर घर में आता है कि नहीं आता है?
0: बिल्कुल आता है सर।
1: उसका आने का समय क्या होता है?
0: मॉर्निंग एंड इवनिंग।
1: यानी कि पानी की किल्लत जो है वो गांव में नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं है।
1: कुछ समय पहले अगर हम जाएंगे तो गांव के औरतें बाल्टी या मटका लेके बहुत दूर दूर से पानी ले आते थे अपने घर के इस्तेमाल के लिए।
0: जी।
1: क्या उस प्रथा से महिलाओं को मुक्ति मिली है? आपका गांव क्या कहता है
0: इस बात के ऊपर? थोड़ा समय आपसे चर्चा करना।
1: हाँ बताइए।
0: जो आपने वो मटका लाने की बात या बाल्टी लाने की बात की है ना, वो वाकई हमारे यहाँ था, हरियाणा में था।
1: जी।
0: अगर आप बात करें अंबाला जिला की तो यहाँ पे शायद वो चीज कम थी काफी। यहाँ पे हैडपंप थे।
1: जी।
0: है ना, तो उससे पानी की सप्लाई होती थी। मैं बात करूँ आप उत्तरी हरियाणा शायद चले जाए, दक्षिण हरियाणा सॉरी, तो वहां पे प्रथा ज्यादा थी। आज वहां भी वो प्रथा खत्म हो चुकी है, हमारे यहाँ तो खत्म हो ही गई है बिल्कुल।
1: हमारे जानने का मकसद यही है कि अगर बदलाव आया है, अगर हमारी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर काम कर रहे हैं, क्या उसका बदलाव धरातल में है कि
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: है? सर, बिल्कुल
1: यही मैं जानना चाहता
0: हूं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल।
1: दूसरा पॉइंट ये है कि जब बारिश होती है तो क्या यहाँ पर पानी के संरक्षण का कोई ऐसा कोई इंतजाम है, या बारिश होने के साथ जो जमीन में पानी जाता है वही ट्यूबवेल के जरिए वापस आता है?
0: नहीं नहीं, तालाब है हमारे यहाँ पे।
1: अच्छा।
0: तालाब में पानी सर इकट्ठा होता है बारिश का पानी, और वहां से उस पानी को यूटिलाइज फसलों में भी किया जाता है, ठीक है ना, और धरती तो रिसाव करती ही करती है पानी का।
1: जी। इसके साथ एक और प्रश्न मैंने आपसे पूछना है, वो आपके गांव की साफ सफाई यानी कि स्वच्छता।
0: जी।
1: जो हमारे देश में इस समय जो एक कार्यक्रम हम रेडियो पे करते हैं, उस कार्यक्रम का नाम है स्वच्छ भारत की कहानी रेडियो की जुबानी। उसमें हम जब गांव में जाते हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में साफ सफाई का साधन क्या है। ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या वो अपने अपने घर के बारे में तो साफ सफाई करते ही हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो गांव के रस्ते हैं, गलियां हैं, क्या वहां पर साफ सफाई सरकार की ओर से या पंचायत की ओर से होती है कि नहीं होती है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आपका गांव कितना स्वच्छ है ये जानना चाहता हूँ।
0: स्वच्छता के बारे में तो बताऊं मैं, आप मेरे गांव में आए, आपने आसपास देख ही लिया होगा।
1: जी जी।
0: वैसे सरकार ने इस चीज के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि हर गांव में सफाई कर्मचारी, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी वो लगाए हुए,
1: ठीक है,
0: है ना, जो गांव की गलियां नालियां प्रॉपर उनको सफाई रखते हैं।
1: जी।
0: लोगों का अपना दायित्व भी होता है, लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी है कि अपने जगह को साफ करें, गलियां नालियां को जो सरकार ने सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं वो करते हैं साफ, और मेरा गांव बिल्कुल साफ और स्वस्थ।
1: एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो है पर्सनल हाइजीन का। पर्सनल हाइजीन का मतलब है मेरा व्यक्तिगत साफ सफाई कितनी है, क्या गांव के लोग इतने सक्षम है जो अपने आप खाना खाने से पहले हाथ धोना ये जरूरी है, या सवेरे उठ के ब्रश करना जरूरी है, या महिलाओं का जो पर्सनल हाइजीन है, क्योंकि जब महावारी होती है, क्या उसका प्रबंधन आप किस तरीके से देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि आपका गांव कितना आगे है या अभी भी कोई कार्य करना बाकी है?
0: आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हरियाणा के गांव वो गांव नहीं रहे, अब ये शहरों से भी शायद ज्यादा आगे निकल चुके हैं।
1: हमें बहुत खुशी है इस बात की। जी।
0: अगर आप मेरे गांव की बात करें तो मेरे गांव में साक्षरता 100% है।
1: जी।
0: हर इंसान पढ़ा लिखा है।
1: जी।
0: सभी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मेरा मानना है कि हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब तो है।
1: जी।
0: और जहाँ पे एजुकेशन होगी और साथ में इनकम सोर्स होगा तो वहाँ सफाई अपने आप
1: ठीक है।

0: मेरे गांव में सफाई के मामले में हर इंसान मतलब सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना धोना हर पर्सन।
1: विजय जी, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी आसपास के जो हमारे अंबाला के वासी हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि देश बदल रहा है, गांव बदल रहा है, इसलिए हम आपके पास आते हैं क्योंकि आप इस गांव में रहते हैं, आप इस गांव के मुखिया है, तो आप इस गांव के बारे में सही जो सूरत है वो आप बता पाएंगे।
0: जी,
1: आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आप 5 साल से ज्यादा से सरपंच है गांव में।
0: जी,
1: एक टाइम होता था जब गांव में कोई झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, तो कोई बड़ा व्यक्ति तो सरपंच ही होता था, उसके पास जाके हम उस मसले का समाधान करते थे।
0: जी,
1: आज के दौर में क्या आपको ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है? क्या आपको भी कहीं पर ये आदेश देना पड़ता है कि ये मेरा फैसला है और ये लागू होना चाहिए, या पुलिस का हस्तक्षेप होता है?
0: देखिए, इसको हम परेशानी तो नहीं कहेंगे
1: जी,
0: क्योंकि जहां अब जैसे कहते हैं ना कि जहां 4 बर्तन होते हैं वो तो खड़कते हैं। अब जब 4 लोग इकट्ठे रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है
1: जी,
0: और वो मेरा सौभाग्य है कि मैं जो सरपंच उन फैसलों का निपटारा करता हूँ। वो लोग जो लड़ते हैं आपस में, वो आपस में तो फैसला नहीं कर पाएंगे
1: जी,
0: ऑब्वियसली वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं कि जी गलती निकाल
1: जी,
0: जिसकी गलती होती है हम उसकी गलती निकालते हैं तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है।
1: यानी कि उसको आप अपने घर के मींस गांव के अंदर ही उस मसले को आप सॉल्व करते
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
1: पुलिस तक जो बात है वो जाती नहीं,
0: नहीं, नहीं वहां तक जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं।
1: जी जी, हमें बहुत अच्छा लगा इस गांव में आके, और जब हम इस गांव में आए, अंबाला से ये तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है
0: जी,
1: और अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, और जब आप उन्नति की बात करते हैं, अपने गांव के बारे में जो बात करते हैं, आप खुश है और आपको जो दायित्व दिया गया है आप उसको निभा रहे हैं, और सरकार का आपके दायित्व निभाने में कितना सहयोग मिलता है?
0: सर 100% सरकार के सहयोग से ही सारे काम होते हैं।
1: और कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि आपके सरपंच रहते हुए आपके गांव में कोई ऐसी जरूरत हो जो आप इस समय इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं?
0: देखिए, मेरा सबसे मेन एक ही बात है कि हर गांव के अंदर एक खेल ग्राउंड जरूर हो
1: जी,
0: क्योंकि देखिए भारत सरकार तो इस चीज को आगे बढ़ा ही रही है, खेलो इंडिया खेलो, जानते हैं सभी लोग, पर खेलने के लिए बच्चों का प्ले ग्राउंड होना बहुत जरूरी
1: जी,
0: क्योंकि अब सभी को पता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज्यादा जा रही है। उसका कारण है कि जब उनको कोई काम ही नहीं मिलेगा तो वो गलत रास्ते पर जाएंगे, नशे की तरफ जाएंगे। खेल भी एक नशा ही है, जिस इंसान को या जिस बच्चे को खेल का नशा लग गया ना, वो दूसरे नशे की तरफ कभी नहीं जाएगा। और अगर गांव में ग्राउंड होगा, शाम को बच्चे वहां खेलेंगे, मेरा मानना है कि वो गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे, और खेलने से शरीर मजबूत होता है और माइंड भी फ्रेश होता है। खेल ग्राउंड बहुत जरूरी है गांव में।
1: तो आप चाहते हैं कि आपके गांव में कोई ऐसी जगह देखी जाए जिस पर एक खेल का मैदान बनाया जाए, जहां बच्चे अपना खेल का प्रदर्शन कर सके?
0: मैं प्रोसेस में लगा हुआ हूँ
1: उसके लिए। क्या गांव से कोई रेजोल्यूशन आपको मिला है जो आपने राज्य सरकार को दिया है?
0: हाँ, हमारी पंचायत ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है
1: जी,
0: और मैंने उसकी डिमांड राज्य सरकार को भेज रखी है, और मुझे आशा है, तो मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी मेरे गांव में खेल ग्राउंड बनवा दे।
1: हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आके आपसे बात करते हुए। आपसे आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आप अंबाला के आसपास जितने भी गांव हैं या जिन गांवों का आपने नाम लिया
0: जी,
1: उनको आप इस कार्यक्रम के माध्यम से FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: देखिए, संदेश तो मेरा सभी गाँव को एक ही है
1: जी,
0: कि सभी लोग मिलजुल के रहें, अपना अपना जीवन सभी लोग जी रहे हैं
1: जी,
0: अपना अपना जीवन जिए, जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमें जो बेनिफिट्स देती है या उनकी जो विचारधारा चलती है कि यहाँ पे गांव में ये विकास होने चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए, उसको फॉलो करें तो सब कुछ अच्छा होगा।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, और हम उम्मीद करेंगे कि जब ये कार्यक्रम प्रसारित होगा आपके सारे गांव वालों को आप ये इन्फॉर्म करेंगे। हम आपको 1 हफ्ता पहले बताएंगे ये रेडियो पर कब आएगा
0: जी,
1: और आप रेडियो सुने। हम रविवार को हरियाणवी सेगमेंट का प्रोग्राम चलाते हैं और ये प्रोग्राम भी हरियाणवी सेगमेंट में ही आएगा
0: जी,
1: और साथ में हम कृषि समाचार भी चलाते हैं। तो जब यहाँ आपके गांव के लोग इस सामुदायिक रेडियो को सुनेंगे
0: जी,
1: मुझे पूरा विश्वास है वो अपने आप को इसके साथ जुड़े पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आओ गांव चले। आज हम आए हैं गांव फलेल माजरा में और हमारे साथ राज्य सरकार के पदाधिकारी, जिनमें से अमित खोसला जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट है पीएचई डिपार्टमेंट अम्बाला कैंट से, और उनकी टीम भी हमारे साथ यहां पर है। तो अब हम अमित जी से जानना चाहेंगे कि जब ये इस गांव में आते हैं और आज का जो हमारा विजिट है, इसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से ये गांव को अपना साथ देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अमित जी।
2: नमस्कार, मैं अमित खोसला, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट अम्बाला से, पीएचडी डिपार्टमेंट। मेरे पास पूरा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर मेरे 6 ब्लॉक्स आते हैं
1: जी,
2: और 400 पंचायतों का ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है पूरा
1: जी,
2: जिसमें 6 ब्लॉकों में नारायणगढ़, शिरादपुर, अम्बाला 1, अम्बाला 2, साहा और बराड़ा शामिल हैं। इन 6 ब्लॉकों में हमारे पास पानी की कोई समस्या नहीं है
1: जी।
2: हमारे पास अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सफिशेंट पानी, जिसे कहते हैं, और भरपूर पानी वाला जिला है हमारा, जिसमें हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, और मीठा पानी जरूर कहा जाता है हमारे इस क्षेत्र के पानी को
1: जी।
2: तो हमारी जो सप्लाई है वो ट्यूबवेल बेस्ड है सारी। शहरों में हमने कैनाल बेस्ड भी कर रखा है और ट्यूबवेल बेस्ड भी कर रखा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, वो सारा ट्यूबवेल बेस्ड है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी धरती का पानी हमें मिल रहा है अम्बाला की धरती से
1: जी,
2: वो साफ है और मीठा पानी हमें मिलता है। हम लोग पूरे गांव के अंदर जो सप्लाई देते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी एंड घर तक पानी ऐसा ना हो कि वो बीच में ही रह जाए, उसको ना मिले। तो जब सप्लाई चलती है, सप्लाई की टाइमिंग्स रखे हुए हैं, प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर पंप ऑपरेटर अपना ट्यूबवेल चलाता है, साथ में डोजर चलाता है
1: जी।
2: डोजर क्या होता है कि एक हमारा कंपोनेंट है जिसके अंदर ब्लीचिंग डालकर लोगों तक पहुंचाया जाता है कि अगर बीच में कोई भी बैक्टीरिया किसी कारण से
1: वो कोई किसी के सेहत पर कोई असर
2: ना पड़े, वो बीच में ही उसको मार दे, तो हम वो डोजर के साथ पानी की सप्लाई देते हैं। अब उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे हम एक बार, हमारी ओटी किट होती है, वहां से जब ट्यूबवेल स्टार्ट होता है वहां से एक बार चेक करते हैं, एक बीच वाले घर से लेते हैं और एक आखिरी घर से लेते हैं सैंपल, ताकि हमें पता लग पाए कि हमारी जो सप्लाई में ब्लीचिंग चल रही है या नहीं चल रही। अगर हमें कहीं भी त्रुटि पाई जाती है तो हम उसी समय उसको चेक करवाते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे पानी की व्यवस्था गड़बड़ गई
1: जी,
2: हमारे पास कोई समस्या आती है कि हमारे पास पानी नहीं आ रहा है, तो तुरंत हम उसके ऊपर कार्रवाई रख के हमारे जो प्लम्बर्स हैं, फिटर्स हैं, वो वहां पर जाते हैं और
1: समस्या का
2: समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं
1: जी।
2: मान लीजिए अगर कहीं लाइन टूट गई है, क्योंकि कई बार प्रेशर से या किसी वाहन की वजह से लाइन टूट जाती है, तो लीकेज होना आम बात है
1: जी।
2: तो लीकेज को उसी समय ठीक किया जाता है, और मान लीजिए कोई बड़ी डैमेज हो गई है तो पाइपलाइन उसी समय बदलने की पूरी हमारी कोशिश रहती है। अब बीच में कई लोगों ने अपने कनेक्शन जो है वो नालियों में से ले रखे होते हैं
1: जी,
2: या किसी कारण से वो नाली के संपर्क में कनेक्शन आ जाता है, तो कई बार क्या होता है कि नाली से कनेक्शन होने से वो जो पाइप है वो गलती है
1: और गंदा पानी जाने का खतरा रहता है,
2: या वहां पर कोई ना कोई ज्वाइंट होता है जिसकी वजह से वो पानी उसके अंदर रिसाव करके अंदर चला जाता है
1: जी।
2: दूसरा कारण क्या होता है कि कई बार लोगों को लगता है कि हमारा जो लैट्रिन वाला हिस्सा है, जहाँ पर जाते हैं बाथरूम जाते
1: जी,
2: हैं
1: सेप्टिक टैंक जहाँ पर होता है,
2: तो वो क्या करते हैं उसको साफ करने के लिए जो मेन पाइप है हमारी, जहाँ से पानी की सप्लाई आ रही है, वहाँ पर वो पाइप लगा के उसमें छोड़ देते हैं कि शायद ये टैंक साफ हो जाएगा या हमारा ये जो सीट है वो साफ हो जाएगी
1: जी।
2: लेकिन कई बार क्या होता है कि वो करते इसलिए कि साफ हो जाए, साफ होता है नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन बाई चांस वो अगर नीचे गिरती है तो जब हमारा ट्यूबवेल बंद होगा और पानी जो है सख्त होगा पीछे, वो
1: लाइनों वहां तक जा,
2: वो लाइनों के अंदर चला जाएगा
1: जी जी।
2: फिर हमारी पाइपलाइन में जब हमारी दोबारा से सप्लाई शुरू होगी तो कुछ घरों में वो सप्लाई जाएगी गंदे पानी की, और बाई चांस वो कोई बच्चा या बड़ा या बूढ़ा पी लेता है उसको, तो उसके बीमार होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हमारी लोगों से एक व्यक्तिगत सुझाव ये भी है कि आप इस तरह की कोई भी प्रक्रिया ना करें जिससे लोगों को या आपके आसपास के या आपके घर के लोगों को उससे दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े। तो हमारी कुछ सावधानी हमें बरतने की बहुत जरूरत होती है। जैसे हमारा अगर पानी हमें सही टाइम पे मिल रहा है, हमने स्कूटी को चलाया, पानी भरा और बंद कर दिया। बंद करने के पीछे मसला ये है कि हमारी लाइन जो है प्रेशर के साथ पानी आगे पहुंच जाती है
1: जी।
2: अब मान लीजिए 10-15 घरों की टूटी खुली हुई है, यूज वो कर नहीं रहा है, वेस्ट वो कर रहा है, नाली में बह रहा है, तो लास्ट घर में वो पानी नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ना कहीं हम उस इंसान के साथ या उस घर वाले के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं कि हम उसको पानी, उसकी जो हिस्से का पानी है वो हमने उसको बीच में ही रोक लिया।
1: अमित जी, इस समय हम गांव फलेल माजरा में हैं और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका शीर्षक है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। उसके अंतर्गत आपके मार्गदर्शन में हम आज इस गांव में आए हैं, हमने सरपंच जी से बात की। तो जब ऐसी समस्या आती है, क्या आप गांव के जो सरपंच होते हैं या गांव के जो पदाधिकारी है, क्या आप उनका सहारा, उनका सपोर्ट भी लेते हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए?
2: अगर मैं गांव की बात करूं, जो गांव का मुखिया है वो सरपंच है
1: जी।
2: हम किसी भी, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, अगर उसने गांव में एंटर करना है तो सरपंच को पहले इंटीमेट करता है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेता है
1: जी।
2: कि हमें ये समस्या सुनने को मिली है या हम ये काम करना चाहते हैं, तो वो सरपंच क्योंकि वहाँ का मौजिज आदमी है
1: जी,
2: उसके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि मेरे गांव में किस जगह पे क्या काम होना चाहिए या किस जगह पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है या ये प्रॉब्लम मेरे पास आई है या नहीं आई है। जब उसको ये चीज़ें पता होती हैं और हम उनसे मिलते हैं तो काम करना बहुत आसान हो जाता है, मतलब कि वो एंट्री पास है हमारे लिए। इसके साथ साथ हमारी VWSC भी है
1: जी।
2: VWSC है, विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी
1: जी।
2: ये जो कमेटी के मुखिया जो हैं वो सरपंच हैं
1: जी,
2: बाकी फिर पंच आते हैं
1: जी।
2: और इसमें 50% हमने भागीदारी रखी है महिलाओं की,
1: ठीक है,
2: आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और महिला पंच, चौकीदार, तो पंप ऑपरेटर, हमारा पब्लिक हेल्थ का जेई, एक पंचायती राज का जेई, तो ये मिलके एक कमेटी बनती है जिसे VWSC का हम नाम देते हैं। अब इनके साथ हमारा मिलना अक्सर होता है और इनसे हमारी बातचीत होती है कि आपके गांव में पानी को लेकर क्या समस्या है या क्या सुझाव देना चाहते हैं या किस तरीके से इसको ठीक करना चाहते हैं। अब मान लीजिए पीछे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन देता है या हमें वो बताता है कि हमारे गांव में पानी की थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम उसको मतलब सुलझाने के लिए गांव में आते हैं, उसका मुआयना करते हैं,
1: कमेटी के साथ
2: देखते हैं। तो कई बार हो सकता है कि किसी ने अपनी टूटियां मतलब अनजाने में ही खोल रखी हैं या किसी ने अपने बाड़े में ही कनेक्शन लगा रखा है, बाड़े में अपनी उसमें छोटी मोटी सब्जी सी लगा रखी है, उसमें लगातार पानी बह रहा है, अब वो पानी बिना किसी कारण से वो वेस्ट कर रहा है, तो उसको समझा कर उस कनेक्शन को बंद कर देते हैं। फिर वो समझ भी जाता है, क्यों, उसमें हमारे साथ सपोर्टिंग गांव के जो मौजिस लोग हैं, सरपंच हैं, वो हमारे साथ चलते हैं।
1: आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो भारत सरकार का जल जीवन मिशन है,
2: हाँ जी,
1: वो भी आपके साथ जुड़ा है, तो क्या ये माना जाए कि जितने भी गांव को आप देखते हैं, जितने कमिटीज को आपने बात अभी की जिनको आप देखते हैं, क्या लगभग हर जगह पर पानी की जो व्यवस्था है वो अच्छे से है और गांव में जो पानी का इस्तेमाल है क्या वो प्रॉपरली होता है, क्या इस पर भी आप उस कमेटी के साथ बात करके उसका ध्यान रखवाते हैं?
2: बिल्कुल रखवाते हैं। हमारे जो हर घर नल से जल 2019 में ही कंप्लीट कर लिया गया था
1: जी,
2: और हमारे राज्य का ये पहला पंचकूला और अंबाला एक ही दिन घोषित किए गए थे 100% घर घर नल से जल रूरल एरिया में
1: जी।
2: तो उसका श्रेय भी हमें जाता है कि हमने वो काम किया, और श्रेय भी जाता है उनको, ग्रामीण लोगों को जिन्होंने हमारा साथ दिया
1: जी।
2: तो हमारे जिस भी एरिया के अंदर जो मेरे अंडर आता है अंबाला के अंदर, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर पाइपलाइन से सप्लाई ना हो रही,
1: नल से जल ना आता हो।
2: हर जगह आता है, टाइमिंग पे आता है और टाइमली वो पानी यूज करते हैं और हमारा पानी भी साफ मिलता है उन्हें। और हम ये भी कहते हैं कि आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो पानी अंबाला का है उसमें आरओ की अभी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत साफ है, आप इसको डायरेक्टली बॉयल करके भी पी सकते हैं।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, आप जो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता जिसको अंबाला में सुना जाता है, आप सभी श्रोताओं का और खास करके जो ग्रामीण हमारे जो लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे पानी के संरक्षण में, पानी के इस्तेमाल में, और अगर आप पर्सनल हाइजीन के बारे में भी कह सकते हैं तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: सबसे पहले तो संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि पानी की जो मात्रा है हमारे पास प्राकृतिक स्रोत है जो बहुत लिमिटेड है
1: जी।
2: हमें ये मिल रहा है, हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हम अम्बाला जैसे शहर में रह रहे हैं और इस एरिया में पानी जो मीठा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो वाटर लेवल है नीचे जाता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इससे वंचित हो जाएं। तो आप से मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप अपना इस्तेमाल करें, पानी ज़रूर करें इस्तेमाल, लेकिन उसको बंद कर दें, उसको नालियों में ना बहाएं या उसको वेस्ट ना करें। जितना अपनी ज़रूरत है आप उसको यूज़ कीजिए और उसको बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है पानी से रिलेटेड तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-5678। ये हमारा जो टोल फ्री नंबर है
1: 1800-180-5678।
2: हाँ जी
1: जी,
2: ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप 24x7 कंप्लेन कीजिए। आपके एरिया का जो कंसर्न जेई और एसडीओ है, आपके ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि ये कंसर्न एरिया का
1: कौन इंचार्ज है और वो उस काम को देख लेगा,
2: देखता है और ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉब्लम है उस एरिया के एसडीओ जेई के पास भी चला जाता है कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम है। तो ये दोनों तरफ हमारी चीज चलती है कि दोनों को पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम हमने रिसॉल्व करनी है।
1: आपसे अनुरोध करूंगा कि नंबर एक बार आप फिर बताएं।
2: 1800-180-5678
1: 1800-180-5678। श्रोताओं, आप सभी को हम रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ की ओर से भी ये कहना चाहते हैं कि पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, और अगर हम इस पानी को सही से इस्तेमाल नहीं करें, अगर हम इसका प्रॉपर इस्तेमाल ना करें तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी का सोचना नामुमकिन है। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बात की और इस गांव की जो और जो आपकी जिम्मेदारी है उनके बारे में आपने बात की और जो संदेश आपने दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संदेश हमारे सभी अम्बाला वासियों तक, हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगा। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन हम सबके लिए अच्छे होंगे। जब गांव उन्नत होगा तो हमारा देश भी उन्नत होगा, और सर्वोपरि हमारा देश है, जब देश है तो हम हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ गाँव चले एपिसोड 12 जो आधारित था गाँव फलेल माजरा अम्बाला पर। पीएचई विभाग के टीम के अमित खोसला, सुनील कुमार एवं रविंदर कुमार के उपस्थिति में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम एडिट, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विस्तार की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

नरगिस हिंदी सिनेमा की एक महान अदाकारा थी, जिनका जन्म फातिमा राशिद के रूप में पहली जून सन 1929 को रावलपिंडी या कलकत्ता में हुआ था।

नरगिस ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म अंदाज, आवारा, श्री 420 और फिल्म मदर इंडिया शामिल है। आपकी जानकारी में इजाफा करना चाहेंगे, फिल्म मदर इंडिया के लिए नरगिस दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

नरगिस की आखिरी फिल्म रात और दिन सन 1967 यानी 1967 थी, जिसके लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

सुनील दत्त और नरगिस की मुलाकात फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया था।

उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। कौमी एकता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। साल 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हुए, जिनमें बॉलीवुड के मेगा स्टार संजय दत्त हैं। राज कपूर और नरगिस के बीच रोमांस की चर्चाएं खूब सुर्खियां बटोरती रही।

हास्य। सन 1956 तक नरगिस ने फिल्मी पर्दे पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, सभी के दिलों पे राज किया। सन 1952 में फिल्म बेवफा, अनहोनी, अंबर, धूम, आह और सन 1956 में अंगारे जैसी फिल्मों ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

राज कपूर के साथ स्पेशल अपीयरेंस के तौर पे जागती रहो फिल्म में नरगिस नजर आई थी। ये नरगिस और राज कपूर की आखिरी फिल्म थी। नरगिस को सन 1980 से सन 1981 तक पार्लियामेंट के लिए राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। 51 साल की उम्र में नरगिस कैंसर की वजह से 3 मई सन 1981 को इस दुनिया से चल बसी।

नम्रता दत्त और प्रिया दत्त, उनकी दो बेटियां हैं। लगभग 51 फिल्मों में नरगिस दत्त ने काम किया। फिल्म अदालत, लाजवंती, जागते रहो, घर संसार, अंगारे, पापी, परदेसी, यादें, बरसात, आग, अंदाज, दीदार, काला बाजार, मिस इंडिया, बाबुल, मेला, अंबर और जोगन जैसी कामयाब फिल्मों में नरगिस दत्त ने काम किया और एक खूबसूरत, मजबूत अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही।

आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विद्यास्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। भिंडी की फसल पर बढ़ सकता है सफेद फफूंद का खतरा, संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करें। गर्मी के बीच बार बार मौसम के बदलाव से भिंडी की फसल में सफेद फफूंद यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग का खतरा है। करनाल क्षेत्र में कुछ जगह बागवानी विभाग टीम को यह लक्षण भी मिले हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण करें और रोग के लक्षण दिखने पर नियंत्रण करें। प्रदेश में करीब 12,480 हेक्टेयर क्षेत्र में भिंडी की खेती की जाती है। पिछले वर्ष लगभग 1,34,143

रोकथाम के लिए किसान सल्फर 80% WDG का 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से बचें। संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करना भी लाभकारी रहता है। भिंडी का गर्मियों में उत्पादन बढ़ने पर मंडियों में सामान्यतः 15 से 30 रुपए प्रति किलो भाव रहता है, जबकि बरसात या ऑफ सीजन में यही भाव 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। गुणवत्ता वाली कोमल भिंडी को अधिक कीमत मिलती है। 40 से 60 दिन में शुरू हो जाती है तुड़ाई। 40 से 60 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। एक बार बुवाई के बाद लगातार कई सप्ताह तक उत्पादन मिलता है। स्थानीय बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। गेहूं धान चक्र से बाहर निकलने के लिए यह एक बेहतर वैकल्पिक फसल मानी जाती है। मूंगफली की बिजाई का सही समय। मूंगफली की बिजाई का सही समय जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरी कर लें। मूंगफली की बिजाई जून के अंतिम सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें। इसकी उन्नत गुच्छेदार किस्मों में MH4 व पंजाब मूंगफली नंबर 1 बोने की सिफारिश की जाती है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. काम्बोज ने बताया कि बुवाई कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर रखकर करनी चाहिए। कतारों में बुवाई इस प्रकार करें कि बीज 15 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग है लाभदायक। मूंगफली की बेहतर पैदावार के लिए प्रति एकड़ बुवाई के समय 13 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट ड्रिल करें। जिप्सम का प्रयोग भी लाभकारी है। दीमक और सफेद लट से बचाव के लिए बीज उपचार अवश्य करें। जरूरत से ज्यादा कीटनाशक व खाद डालने से मर जाते हैं मिट्टी के मित्र। फसलों में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाएगा उत्पादन। आधुनिक कृषि में जब भी फसल उत्पादन बढ़ाने की बात होती है तो अमूमन हमारा ध्यान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश युक्त NPK रसायनों पर जाता है। मिट्टी का अपना माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीव संसार हो रहा है। ऐसे में यदि ये पूरी तरह से नष्ट हो गया तो करोड़ों रुपए की खाद भी फसलों को जीवन नहीं दे पाएगी। उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वरिष्ठ जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर किरण करनाल के अनुसार रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है। अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी का जैविक ताना बाना पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। जब हम जरूरत से ज्यादा यूरिया या कीटनाशक डालते हैं तो मिट्टी के मित्र बैक्टीरिया और कवक मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी ऊपरी तौर पर तो मौजूद रहती है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह कोमा की स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और फसलों पर कीटों का हमला बढ़ जाता है। किसान पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर सॉइल बायोलॉजी को समझे और जरूरी वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाना जरूरी। क्रॉप रोटेशन का वैज्ञानिक आधार। मिट्टी में कार्बन का स्तर कम से कम 0.5 से 0.75% होना जरूरी है। इसके लिए ढेंचा, मूंग जैसी हरी खाद, केंचुआ खाद और फसल अवशेषों को खेत में ही गलाएं। कार्बन मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन है। लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी का माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाता है, इसलिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है। दलहनी फसलों की जड़ें राइजोबियम बैक्टीरिया को आकर्षित करती हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का रुख PSB और एजोटोबैक्टर जैसे जैव उर्वरक मिट्टी के लाभकारी बैक्टीरिया को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। पौधों को मिलेगा सुलभ भोजन। स्वस्थ मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जटिल पोषक तत्वों को पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध भोजन में बदलते हैं, जिससे फसलों की

0: वृद्धि और उत्पादन बेहतर होता है। बेलों के नीचे घास फूस या फसल अवशेष बिछाएं, होगा गर्मी से बचाव। 30% तक नुकसान घटाने में रहेगी मददगार। बढ़ती गर्मी बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए चुनौती बन रही है। मई जून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने पर लौकी, तरबूज, खरबूज, खीरा, तोरई, करेला और कद्दू जैसी फसलों की बढ़वार प्रभावित होने लगती है। बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे समय में अंतराल पर सिंचाई इंटरवल इरिगेशन तकनीक फसलों को गर्मी से बचाने में कारगर साबित हो रही है। इस तकनीक में मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई की जाती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और तापमान नियंत्रित रहता है। इससे पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मल्चिंग भी उतनी ही लाभकारी है। बेलों के नीचे घास फूस या फसली अवशेष बिछाने से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं। बागवानी विकास अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम खैरवा ने किसानों को सुबह या शाम सिंचाई करने की सलाह दी है। यह है इंटरवल इरिगेशन। इस तकनीक को रुक रुक कर सिंचाई करना भी कहा जाता है, जहां खेतों को लगातार पानी देने के बजाय निश्चित समय के अंतराल पर पानी दिया जाता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। तो मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 8। आज का शीर्षक है रिश्ते सुलझाने हैं तो मतभेद सुलझाने जरूरी। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता RJ किरणी। यह है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, लेकर आई हूं पॉडकास्ट विद किरणी का एक और नया एपिसोड। जिंदगी के सफर में रिश्ते सबसे खूबसूरत साथी होते हैं, लेकिन इन रिश्तों को बनाए रखना और निभाना ये भी एक कला है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि अगर मतभेद हो जाए तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा, लेकिन असल में मतभेद रिश्ते तोड़ते नहीं अगर हम उन्हें समझाने का हौसला रखें। आज बात होगी उन्हीं छोटी छोटी बातों की जो कल किसी रिश्तेदार की खामोशी बन जाती है, उन उलझनों की जिनके हाल हम ढूंढ लेते हैं, रिश्ता और गहरा और मजबूत हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिल से निकला हुआ सफर। रिश्ता निभाना है तो मतभेद सुलझाना होगा। झगड़े और बहस हर रिश्ते में होते हैं, पर ये पूरी तौर पर ही हो तो अच्छा है। विवाद को लंबा खींचकर रिश्ते खराब होने की वजह ना बनने दे। जिंदगी में रिश्ते हमें प्यार, समर्थन और खुशी देते हैं, लेकिन वे बहुत नाजुक भी होते हैं। उन्हें सहज कर रखना बहुत जरूरी है। हालांकि कई बार छोटी छोटी बातों और बहस की वजह से रिश्तों में दरार पड़ जाती है और वे टूटने की कगार पर पहुँच जाते हैं। ऐसे में अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि रिश्ते का पवित्र धागा टूटने के बजाय मजबूत बना रहे। जिद पर अड़ने से बचे। रिश्ते में अपनी बात मनवाने की जिद अधिकतर झगड़ों को खत्म नहीं होने देती है। इस जिद की वजह से झगड़े के बाद बातें और बिगड़ जाती हैं। ऐसे में झगड़े के बाद जिद पर अड़ने की आदत से बचना होगा, ताकि माहौल को शांति से ठीक किया जा सके। माफी मांगना व क्षमा करना। अगर झगड़े के बाद दोनों ओर से बातचीत बंद है तो पहल करने की कोशिश करें। अगर आपकी गलती है तो ईमानदारी से माफ़ी मांगे। अगर आपके साथी ने गलती की है और वह माफ़ी मांग रहे हैं तो बात बुलाने का बड़कपन दिखाए। वह माफ़ी ना भी मांगे तो भी अपने पहल कर सकते हैं। कुछ प्रयास करें। झगड़े के बाद थोड़ी कोशिश आप भी करें। हो सके तो मनाने के लिए कुछ गतिविधियों जैसे घूमना, मूवी देखना या कोई फन एक्टिविटी करना प्लान करें, ताकि साथ में अच्छा समय बिताया जा सके। अच्छे समय से क्रोध कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बहस होने पर ब्रेक लें। कहते हैं कि अपनों के लिए हार जाना भी गलत नहीं, इसलिए अगर बहस बढ़ रही है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। जब माहौल ठंडा पड़ जाए तो साथी को अपनी समस्या बताएं और मिलकर कोई हल निकालने की कोशिश करें। वजहों पर बात जरूरी है, संवाद जरूरी है, इसलिए लड़ाई के बाद बातचीत करना बंद ना करें। एक दूसरे की समस्याओं को शांति से सुने और चर्चा करें कि क्या गलत हुआ और किन चीजों की वजह से दोनों के बीच तीखी बहस हुई। समझे कि समय लगेगा। अगर बहस बहुत अधिक बढ़ गई हो तो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूरी बनाना अच्छा हो सकता है। वो समय आपको चीजों को शांति से सोचने का मौका देगा, हालांकि दूरी क्षणिक ही हो इस बात का ध्यान रखें। प्रोफेशनल हेल्प भी ले। विवाद बढ़ रहा है और खुद सुलझाना मुश्किल हो रहा है तो किसी रिलेशनशिप काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से मदद लेने से कोई बुराई नहीं है। टकराव से बचने के टिप्स। सुनना जरूरी है, इसलिए जब आपका साथी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हो तो उसे बीच में टोके बिना ध्यान से सुने। दोषारोपण से बचे। जैसे तुम हमेशा ऐसा करते हो या तुम्हारी वजह से, जैसी बात ना कहे, इसके बजाय मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ के जैसे वाक्यों को चुने। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाइए और पार्टनर की भावनाओं को समझे। गुस्से में कुछ भी कहने से बचे। रिलेशनशिप में तालमेल बिठाना आवश्यक है, इसलिए अपनी जरूरतों को समझे और पार्टनर की जरूरतों का भी सम्मान करें। विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखें। भरोसा धीरे धीरे बनता है, इसलिए इसे टूटने ना दे। यदि कोई संदेह या असुरक्षा है तो बिना विवाद उस पर चर्चा करने की कोशिश करें। एक दूसरे के साथ समय बिताना आवश्यक है। साप्ताहिक या मासिक गतिविधियां साथ में जरूर प्लान करें। अपनी उपेक्षाएं स्पष्ट करें। रिश्ते से आपकी क्या उम्मीदें हैं इस पर स्पष्ट रहे। पार्टनर की उपेक्षाओं को भी समझे और संतुलन बनाए रखें। रिश्ते मुंह मोड़ लेने से नहीं बनते, वो तो तब बनते हैं जब हम ईगो को थोड़ा पिघलाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दूसरों के पहलों को भी। मतभेद हर रिश्ते में होते हैं, पर अगर हम हर बार रिश्ता छोड़ने की सोचेंगे तो जिंदगी में सिर्फ लोग मिलेंगे, रिश्ते नहीं। तो चलिए आज से एक नया फैसला लेते हैं, मतभेद होने से पहले नहीं भागेंगे, सुलझाएंगे, समझाएंगे और रिश्ते का और गहरा बनाएंगे। रिश्ते उन्हीं के साथ बनते हैं जो मतभेद के बाद भी साथ निभाते हैं। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: ये है रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम गजल गायक जगजीत सिंह के ऊपर, और पेश करने जा रहे हैं रमेश मरहटा।
2: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह नहीं रहे।
3: चिट्ठी न कोई संदेश,
2: ऐसे हिजर के मौसम कब कब आते हैं, तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं।
3: जहां तुम चले।
2: जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। उनके वालिद मोहतरम सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के एक विभाग पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे। जगजीत का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां थी बचन कौर। जगजीत के बचपन का नाम जीत था, बाद में ज्योतिषों के कहने पर उनका नाम जगजीत पड़ गया। शुरुआती तालीम गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए आप जालंधर आ गए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सन 1965 में आप मुंबई आ गए और पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई शहर में ही रहने लगे, और यहाँ विविध भारती में जिंगल और विज्ञापन गाकर रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया। सन 1976 में पहला हिट एल्बम पेश किया और इन 1967 में एक रिहर्सल के दौरान आपकी मुलाकात चित्रा से हुई, और 2 साल के बाद यानी 1969 में आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों साथ मिलकर गाने

0: छोटी सी रात वो लंबी कहानी।
1: उनकी गजल गायकी चिनाब के पानी से उठती हवा की हल्की महक का एहसास कराती है। बेशक जहलम के उस पार गजल गायकी की एक बेशकीमती दुनिया बसती रही है, पर वहां भी इस बात का इल्म रहा है कि दूसरी छोर पर गजल को बहुत करीने से, संजीदा जज्बात से सजाया जा रहा है।

गजल ही नहीं, दोहे, कुछ लोकगीत और भजनों में भी जगजीत ने अनोखा समर्पण दिखाया। बेगम अख्तर ने गाया और बखूबी गाया। मेहदी हसन को तो लोगों ने ऊंचे तख्त पर ही बिठा दिया। गुलाम अली हर महफिल की शान हो गए, पर जगजीत को यह दर्जा मिला कि उनकी वजह से गजल लोगों में आम हो गई।

पंजाब की धरती में शायद नदियां भी सुर से बहती हैं। जगजीत ने वहां की खुशबू को पहचाना, शौक मिजाज को समझा, वहां के रंगों को जाना और जगजीत बचपन से ही गाने लगे। आपकी गजल हर दिल को छूती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने उस्ताद जमाल खान से ली। जगजीत के पिता एक साज बजाया करते थे और उस साज को दिलरुबा कहते हैं। घर में भले ही संगीत का माहौल नहीं था, पर उनके पिता को संगीत का शौक था। जगजीत के पिता ने ही जगजीत को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। बाद में उनका रुझान इस तरफ हो गया और आप सीखने लगे। जगजीत ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पंडित छगनलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया और लगभग 2 साल तक संगीत की तालीम हासिल की।

सन 1990 में एक सड़क हादसे में विवेक उनका बेटा जो 21 साल का था दुनिया से चल बसा। उनकी गोद ली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर दुनिया, जगजीत और चित्रा को अलविदा कहा। जगजीत अक्सर कहा करते थे, संगीत के लिए समर्पण और रियाज की जरूरत होती है। जब तक मैं जिंदा हूं गजल भी जीवित है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह पर एक कार्यक्रम, प्रस्तुत करता रमेश मरहटा। यह है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

कहे रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे, सोई सांची मीत। सुविख्यात कवि रहीम दास द्वारा रचित ये दोहा हम सब ने आज तक सुना भी है और पढ़ा भी है। इस दोहे के माध्यम से कवि हमसे कहता है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोखोरी। आज एक नया कार्यक्रम लेके आया हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती की, दोस्तों की, और जिंदगी में हमारे दोस्तों का क्या महत्व है। आज का ये कार्यक्रम मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं, जो दोस्त हमारे साथ हैं और जो दोस्त हमारे साथ अब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दोस्ती और दोस्त ये भगवान ने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। बिना दोस्तों के और बिना दोस्ती के जिंदगी अधूरी है। दोस्तों पर इतना निर्भर इंसान होता है शायद अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं। कुछ दोस्त जिंदगी में छूट जाते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। दोस्ती एक पूजा है और पूजा ही दोस्ती है। दोस्ती एक प्रार्थना है। दोस्त एक साथी है और उसका साथ रहना ही दोस्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ए फ्रेंड इन ए नीड इज फ्रेंड इन डीड।

व्यक्ति को प्रत्येक रिश्ता अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर पहले से ही बना के देता है, पर दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है।

सच्ची मित्रता रंग रूप नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा इसी प्रकार के किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है मित्रता हम उम्र के मध्य होती है, पर यह गलत है। मित्रता किसी भी उम्र और किसी के साथ भी हो सकती है। व्यक्ति के जन्म के बाद से ही वो अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बार व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके प्रत्येक राज को जानता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वो अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है, और व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो समाज उसके दोस्तों को भी सम्मान रूप से उस गलती का भागीदार समझता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जहां लोग आपसे बात भी अपने स्वार्थ सिद्ध के मनोकामना से करते हैं, ऐसे में सच्ची मित्रता भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्ती करते थे तथा अपना कार्य हो जाने पर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोस्ती का हाथ हमेशा सोच समझकर अन्य की ओर बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात जिसे बांट सके वो व्यक्ति का मित्र होता है। मित्रता जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर तथा किसी से भी हो सकता है। एक पिता अपने पुत्र का मित्र हो सकता है, इसी तरह माँ बेटे में मित्रता हो सकती है, पति पत्नी में भी मित्रता हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि हम उम्र के लोगों के मध्य ही मित्रता हो। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। नुक्ताचीनी को मित्रता कहना अनुचित होगा। परिवार के बाद दोस्त व्यक्ति की दूसरी प्राथमिकता होती है, जिसके साथ वो हर अच्छे बुरे पलों को व्यतीत करता है। सुविख्यात कवि रहीमदास द्वारा एक चर्चित दोहा में कहा गया, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, रहमन फिर पाए टूटे मुक्तहा। मतलब, सच्चे मित्र जितनी बार आपसे रूठे उन्हें मना लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के टूट के बिखर जाने पर हम उन्हें बार बार पिरोते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है, ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी है। मेरे मित्रों का समूह मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। जीवन में व्यक्ति जिन आदतों को वाहन करता है वो मित्रता की ही देन होती है। व्यक्ति के घर से निकलने पर पहली आवश्यकता मित्र होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति मित्र बनाने की होड़ में लग जाता है, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है तथा वो अकेले नहीं रह सकता। पर यह कितनी गंभीर बात है, हम अपने लिए कोई जानवर भी लाते हैं तो उनके तहकीकात करके लाते हैं, पर हम मित्र बनाने में इतना समय नहीं लगाते, जबकि मित्रता व्यक्ति का पतन भी कर सकता है और व्यक्ति को कामयाबी के उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हम व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके हाव भाव तथा उसका हंसमुख चेहरा ही देखते हैं, जो संकट में हमारे काम नहीं आता। यहां पर मेरा एक व्यक्तिगत कहना है कि अगर आपसे दोस्त रूठ जाए या आप उनसे रूठ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप उनको मना लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इतना दूर चला जाए कि आप उनसे कोई संवाद ही ना कर सके। इसलिए कहा गया है, तेरे जैसा यार कहां।

आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तान, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जीवन में लोगों के अनेक दोस्त बनते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, व्यावसायिक दोस्त, मतलब टाइम पास के दोस्त आदि। इनमें से कुछ वक्त गुजारने के साथ पीछे छूट जाते हैं और कुछ जीवन भर आपके हर अच्छे बुरे परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं। अपनी परेशानी की बात अपने दोस्तों को बताने से निश्चय ही मन का भार कम होता है तथा मित्रता व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। मित्रता जीवन को रोमांच से भर देता है। मित्र के होने पर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता तथा सच्चा मित्र बिना विचार किए ही आपके संकट में देख मदद के लिए आगे आता है। वरन लोग तो बहुत हैं जो कहते नहीं थकते हम आपके मित्र हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने तथा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे, फिर भी विपत्ति पड़ने पर कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, शायद वो लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक दो या इससे भी अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। आपस में व्यवहार मिलने पर बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति से कभी मिले हैं या नहीं। व्यक्ति समस्या अपने परिवार के साथ भी बांट नहीं पाता है। वो मित्रता में दोस्तों को बड़े आराम से बता देता है, जिसके साथ हम जीवन के उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी तथा शोक के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बांट सकते हैं। वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416013010 पर दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: पेश है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला, पेश कर रहे हैं आरजे नरेश शर्मा, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी।
2: हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमको तलाश रही है क्यों तेरी बेताब नजरें, खुद में झांक हम तेरी आंखों में दिखाई देंगे। ओ हां नमस्ते, ये तो मैं कहना भूल ही गया आपसे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। एक खास प्रोग्राम आपके सामने आज लेकर आ रहा हूं। ये रेडियो वितस्ता का वितस्ता गीतमाला नामक प्रोग्राम है। शुरू करने जा रहे हैं हम संगीत का वो सफर जो कुछ समय के लिए आपके सारे दुख, आपकी सारी चिंताएं और आपकी सब परेशानियों को आपके दिल और दिमाग से दूर कर देगा। और अगर कुछ रहेगा ना तो सिर्फ जहन में एक ही नाम, वितस्ता गीतमाला। और इसके साथ होंगी प्रज्ञा गोयल जी की शायरी, मेरी आवाज और रेडियो वितस्ता का साथ। रेडियो वितस्ता के इस विशेष कार्यक्रम से जिसका नाम है वितस्ता गीतमाला पार्ट टू। कांटों भरा है सफर, मेरे साथ चलो। कांटों भरा है सफर, मेरे साथ चलो। ना जाने कब हो गम की सहर, मेरे साथ चलो। मैं अकेले भटक न जाऊं कहीं, अंधेरी है डगर, मेरे साथ चलो। तेरे पथ में तेरे हमराह और भी हैं, तेरे पथ में तेरे हमराह और भी हैं, मैं जानती हूं मगर मेरे साथ चलो। है तुझको नसीब सपनों का बसेरा, मैं मुसाफिर हूं उम्र भर, मेरे साथ चलो। अंधेरी है डगर, मेरे साथ चलो।

उठते उठते एक दिन अभिमान भी उठ जाएगा, उठते उठते एक दिन अभिमान भी उठ जाएगा, जनाजे के पीछे ये साजो सामान भी उठ जाएगा, उठ जाएगा ये शोहरत का लबादा भी एक दिन, इस किराए के घर से ये मेहमान भी उठ जाएगा, रह जाएगा यहां बस कुछ यादों का कारवां, सब मुझी से है ये गुमान भी उठ जाएगा, ये गुमान भी उठ जाएगा।

देखिए साहब, लोग किस तरह से किसी को भूलने की कोशिश करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं। एक कवियत्री ने अपनी कलम से क्या खूब इसका जिक्र किया है, और ये कवियत्री कोई और नहीं प्रज्ञा गोयल जी हैं। प्रज्ञा जी कहती हैं कि पानी पर पानी से लिखकर नाम मिटाती हूँ तेरा, पानी पर पानी से लिखकर नाम मिटाती हूँ तेरा, भुला दिया है यह कहकर जिक्र दोहराती हूँ तेरा, तेरे नाम का सिरहाना अब भी खाली रखती हूँ, तेरे नाम का सिरहाना अब भी खाली रखती हूँ, एक करवट से सोती हूँ अब भी राह तकती हूँ, दिल के पिंजरे में प्रेम का पंछी संभाल रखा है, तू लौटेगा एक दिन अब भी ये वहम पाल रखा है, तू लौटेगा एक रोज अब भी ये वहम पाल रखा है।

गीत मेरे, जब तेरा नाम गुनगुनाए तो चले आना। गीत मेरे तेरा नाम जब गुनगुनाए तो चले आना, खुली आंखें ख्वाब तेरा दिखाएं तो चले आना। पत्तों की साए साए में जब तेरे कदमों की आहट हो, फूलों में भी तेरे सांसों की महक हो तो चले आना। ये गलियां कूचे आशियाना आज भी जानते हैं तुझे, ये गलियां कूचे आशियाना आज भी जानते हैं तुझे, मेरे हर नासूर का मरहम हकीम मानते हैं तुझे। वक्त रुखसत की जो खबर मिले तो चले आना, गीत मेरे जब तेरा नाम गुनगुनाए तो चले।

अब देखिए, प्यार की जहां तक बात है, किसी को प्यार नहीं मिलता तो साहब किसी को दिलदार नहीं मिलता। इसलिए एक सुनहरी कलम से लिखा गया, जमाने भर में ढूंढो मगर अब प्यार नहीं मिलता, जमाने भर में ढूंढो मगर अब प्यार नहीं मिलता। दुनिया भुला बैठे हैं इस चाहत में, वो दिलदार नहीं मिलता। मेरी शख्सियत को वो जमाने भर में खोजो मगर, मेरी शख्सियत को जमाने भर में खोजो मगर, मैं वो हस्ती हूँ जिसका किसी से भी किरदार नहीं मिलता। मुद्दत तक डोले हम मुनसिफ के निकाली, मुद्दत तक डोले हम मुनसिफ की निगाह लिए, जब आईना देखा तो खुद से बड़ा कोई गुनहगार नहीं मिलता। अपने होठों की हंसी उनके लबों पर सजाए, अपने होठों की हंसी उनके लबों पर सजा आए, मगर जब दर्द हमको होता है तो कोई भी हिस्सेदार नहीं मिलता, कोई भी हिस्सेदार नहीं मिलता।

0: कभी कभी
1: जो कहीं ना मिल सका उसी को ढूंढती हैं, जो कहीं ना मिल सका उसी को ढूंढती हैं, बेचैन सांसें बस सुकून को ढूंढती हैं।

तन्हाइयों में कुछ दर्द पुराने निकले, तन्हाइयों में कुछ दर्द पुराने निकले, कुछ सिसकियां कुछ अश्क बहाने निकले, आज फिर प्रेम से पढ़ा उनको, बंद संदूक से जो खत पुराने निकले। ऊपर लिखा था प्रियतमा, नीचे लिखा था आपका, ऊपर लिखा था प्रियतमा, नीचे लिखा था आपका, इन दोनों के बीच मेरे तो जमाने निकले, इन दोनों के बीच मेरे तो जमाने निकले। रोना कौन सुनता है, कहो किसको सुनाए, रोना कौन सुनता है, कहो किसको सुनाए, दर्द को ही गीत बना महफिल को सुनाने निकले, दर्द को ही गीत बना महफिल को सुनाने निकले।

गजल तू कहे तो मैं तेरे नाम लिखता जाऊं, तो अगर दिन को रात कहे तो मैं रात लिखता जाऊं। तू बेचैनी, तू सकून, तू खलिश और तू ही करार। तू बेचैनी, तू सकून, तू खलिश और तू ही करार। तू अगर कहे तो मैं तुझको ही उद्गार लिखता जाऊं। तू मेरे ख्वाबों में, तसव्वुर में, बात में, रात में। तू अगर कहे तो मैं तुझी को सारी कायनात लिखता जाऊं। मंजिल की किसे तलाश है अगर हम सफर है तू, मंजिल की किसे तलाश है अगर हम सफर है तू। बस तेरा साथ बना रहे, मैं क्यों ना इस सफर को ही सौगात लिखता जाऊं, मैं क्यों ना इस सफर को ही सौगात लिखता जाऊं।

0: हम प्रज्ञा गोयल जी की आवाज आपको सुनाते हैं। आप सुनिए प्रज्ञा गोयल जी की आवाज। तो ये हैं प्रसिद्ध कवियत्री प्रज्ञा गोयल।
1: नमस्कार, मैं प्रज्ञा गोयल मुजफ्फरनगर से रेडियो विश्वस्ता के सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मैं श्री भारत सपोरी जी एवं श्री नरेश शर्मा जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी भावनाओं जो रचनाओं के रूप में प्रकट होती हैं अपने गीतमाला कार्यक्रम में स्थान दिया। एक बार पुनः रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 2। पेश कर रहे हैं आरजे नरेश शर्मा।
0: वैसे तो कहते हैं कि किसी खास चीज के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि जब तक एक खास जुनून के लिए सब कुछ ना छोड़ा जाए ना, तब तक वो मकसद हासिल नहीं होता जिस मकसद के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है। तो जिनकी शायरी आप सुन रहे थे ना इस कार्यक्रम के बीच में, प्रज्ञा गोयल जी, उन्होंने अपनी कलम के लिए अपने शब्दों को एक मूर्त देने के लिए, अपने एहसासों को आप तक पहुंचाने के लिए सच मानिए बहुत कुछ छोड़ दिया।

आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता का ये विशेष कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा अगला प्रोग्राम लेकर आपके साथ में। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीत माला, पेश किया आरजे नरेश शर्मा ने। एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी का था। इसको रिकॉर्ड किया गया था स्टूडियो रेडियो वितस्ता अंबाला कैंट में। आप लोग अपनी राय जरूर हमें दें हमारे मेल आईडी पे, जो है radiovitasta@gmail.com।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदारा 90.0 मेगा।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ए बाबू ले लो ना नारी

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star. Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

पर तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

0: साथ चलन की तैयारी कर ले,
1: इधर ले।
0: अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

0: यो FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
4: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਥਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ ਅਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ FM 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਪਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਥਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਖੀ ਨੇਹਾ ਦਾਕੜ, ਅਰਥਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰ ਹੂੰ FM 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾ। ਮਾਰਾ ਆਜ ਕਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਹੈ ਹਾਸੀਏ ਪਾ। ਹਾਸੀਏ ਕਾ ਅਰਥ ਹੋਆ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾ ਜਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹ ਆਖਰੀ ਹੋਆ। ਆਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾ ਜਿਨ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਠਾ ਕਾ ਸਮਾਜ ਮਾ ਅੱਗਾ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਫਤਿਹਪੁਰ 126 ਗਾਓ ਕੀ ਸੁਮਿਤ ਕੌਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਗਰ ਮਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਕਾ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪਾ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਇਨਕੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾ ਔਰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਸਤਾ ਆਈਏ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਹੈ ਸੁਮਿਤ ਕੌਰ ਤੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਚਾਚੀ।
1: ਰਾਮ ਰਾਮ।
0: ਔਰ ਚਾਚੀ ਠੀਕ ਠਾਕ?
1: ਠੀਕ ਆ।
0: तो चाची थारे पास 9 लड़कियां हैं और तन्ने इनका पालन पोषण किस तरह करया और इनके पालन पोषण वास्ता क्या क्या तन्ने काम करे?
1: मैं तो मजदूरी करी बेटे, खेता में काम करया, ठीक है, घर में भी लोग किसी किसी के में भी कर कर का देखे, सारा कुछ करा। मैं तो मजदूरी करी मैंने, यानी कि अपना पालन पोषण बच्चा का खुद करे।
0: और समाज ने तेरा कितना साथ दिया? लाले अपने रिश्तेदार हुआ, जानकार हुआ, इनने तेरी कितनी मदद करी?
1: कोई किसी की मदद नहीं करता बेटे, सब मुंह मोड़ा। माड़े टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता, ठीक है, अपने आप करना पड़ा, जो भी कुछ करना पड़ा, किसी का कोई सहारा नहीं होता है।
0: और चाची जिस तरह घर में कोई रोजगार भी का साधन नहीं है था, कोई काम भी नहीं है था, तो कौन सा काम करे कराती भी जिस ते घर का काम चल जाता, अपने घर का गुजारा चला था, और जिस तरह पेट की भूख हो आ तो जिंदगी के रंग दिखा दे, तन्ने कौन कौन से रंग देखे अपनी जिंदगी में?
1: बहुत रंग देखे बेटे हमने भी, बहुत ज्यादा घर में, मतलब बहुत मुसीबत काटी है, तो मेहनत मजदूरी करी।
0: ठीक बात चाची। और आज तन्ने कितनी लड़कियां का ब्याह कर दिया और जोन सी हो रहे मैं क्या कुछ कर रही?
1: 4 लड़कियां का ब्याह कर दिया, एक इंजीनियर का कोर्स कर रही, उससे जॉब कर रही बड़े वाली जो कमा रही है, और एक 10वीं माँ एक 8वीं माँ पढ़ रही है अभी।
0: और चाची जिस तरह तो गोमा रहा तो तेरे पास लड़कियां थी, तो तनु समाज के लोग भी कुछ कहा थे भी हाँ इस पर तो लड़कियां, इस पर कोई लड़का नहीं है, इस तनु कुछ कहा लोगों ने भी?
1: बतेरा कुछ कहा लोग भी बोगे, पर मतलब ये था भी अपने बच्चों भी सही से अच्छे संस्कार दे रखे, अपने आप भी अच्छे, उसमें कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम किसी का कोई कुछ ही कहीं जो कोई हम मन पर नहीं करते हैं। तो आज मेरी लड़की उन्हें मतलब वही लड़की मेरी बच्चन बहना भी पढ़ाया लिखाया भी रही है, घर का गुजारा भी करवा रही है, हमारे गेर लग का सारा कुछ कर रही है नेके।
0: अर चाची जिस तरह तेरी लड़कियां का ब्याह हो गया तो उन्हें ससुराल माँ मैं अपने किस तरह अपने तेरे संस्कार दिख रहे उन्हें, और ससुराल वाले तेन क्या कहा भी हाँ तन्ने अपनी बेटिया नु अच्छे संस्कार दे रखे?
1: हाँ बेटे बहुत अच्छे, हाँ बीमारा तो घर तन्ने मतलब यानी स्वर्ग बनवाया दिया, कोई माड़ा बोल नहीं बोलता मेरे बच्चे, बहुत खुश है बेचारे।
0: ठीक बात चाची। तो चाची आज के समाज ते तो क्या कहना चाहा, इस रेडियो के माध्यम ते क्या संदेश देना चाहा भी जद जिंदगी जमी हासिए पा आ जा तो क्या हार माननी चाहिए अक उसका सामना करना चाहिए?
1: कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मतलब अपना संघर्ष करना चाहिए, कभी भी मतलब जिंदगी में कुछ भी हो कुछ ना, अपना अपना मतलब सहारा नहीं, मतलब वो छोड़ना नहीं चाहिए भी, जो भी हम बिल्कुल मर पा तो ये काम होता ही नहीं है जी, तो मतलब हम लोग करके दिखाना चाहिए, अपना मतलब बिल्कुल सहारा नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मेहनत मजदूरी करो, अच्छे काम करो,
0: चलते रहना चाहिए
1: यानी कि
0: चाहे कोई साथ दे रहा चाहे नहीं
1: भी दे रहा कोई, अपना संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी।
0: ठीक बात चाची। तने बहुत मेहनत मजदूरी करके अपनी लड़कियां नू पालिया और आज तेरी लड़कियां ऐसी जगह खड़ी भी जहां सब हां कहां भी यो सुमित कौर की लड़की है और इतनी अच्छी जगह पहुंच गई है, यह बात तेरी बिल्कुल सही है चाची। और चाची न्यू तो कहा भी कोई किसी की मदद नहीं करता, अपनी मदद अपने आप करनी चाहिए, भी जो मोहब्बत का यहाँ दिला में बीज बो नहीं सकते, वह दौलत खा का जो औरा के आंसू धो नहीं सकती, उस आंख ते बे आंख बेहतर आदमी जो आंख किसी के दुख में रो नहीं सकती, यह बात तो बिल्कुल सही है, भी उस जो सी दौलत आ उस ते तो बेदौलती बंदा ठीक है जो किसी के दुख में साथ नहीं दे सकती। तो तने समाज ते यही आज संदेश दिया भी कदी अपनी हार ना मानो और चल दे रहो।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और क्या कहना चाहगी समाज ते, जिनके पास आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास लड़कियां ही लड़कियां, तो उन्हें क्या कहना चाहगी भी उन्हें क्या करना चाहिए?
1: मैं मतलब समाज में यही कहना चाहूंगी, बेटियां जो है तो बेटों से कम नहीं है। मैं बीमार हो गई थी, मैं बिल्कुल किनारे पर बैठ गई, तो मेरे इन्हीं लड़कियों ने, जवाइयों ने मेरे मतलब इतना सहारा दिया भी, मेरे को मरी को भी उठा दिया इन्होंने। तो इन्होंने अच्छी शिक्षा दो, अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाओ इन्हों लड़कियां नो, तो मतलब अपने संघर्ष करो, यानी कि तो मैं यही कहना चाहूंगी लड़कियां बेटों से कम नहीं है, तो इन्हों पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो इनको।
0: और फिर भी तो चलती रही और तो चल का आज ऐसी जगह पहुंच गई भी जहां सब तनु सल्यूट कर रहे भी हाँ इसकी लड़कियां इतनी अच्छी जगह पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद चाची, तन्ने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में मनु बताया, हमारे श्रोता ने इसके बारे में जानकारी दी और किस तरह तो अपने परिवार नु आगा लेकर आई, तन्ने यो भी बताया आज हमारे समाज नु इसी चीज की जरूरत आ, जिनके पास लड़कियां लड़कियां है उन्हें भी बहुत अच्छी बात मिली भी हाँ मनु भी किस तरह उठना चाहिए और किस तरह आगा बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाची।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पास आया, आप हमारी बात समाज में आगे बताएंगे करेंगे रेडियो के माध्यम से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम सुन रहे थे मारा कार्यक्रम हासिए पा और हम अगला कार्यक्रम लेका फिर थारे ते रूबरू होवांगे। जथन ने भी लगा भी थारे नेड़ा भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी बहुत संघर्ष भरी हो और जिनने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करा हो, तो थम मन ने मारे स्टूडियो के नंबर पर फोन या मैसेज करका बता सका। मारा नंबर आ 7054131010 7054131010। अच्छा इ मैं चलू हूँ, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकर आए हैं आज के कृषि समाचार और इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगी मेरी साथी।
2: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कपास की फसल में हो सकता है चित्तीदार और गुलाबी सुंडी का प्रकोप, थ्रिप्स चूड़ा रोग से भी बचाना जरूरी। कपास की फसल करीब 2 महीने की हो चुकी है, ऐसे में खेत का प्रतिदिन निरीक्षण करें। जून से देसी कपास में वित्तीदार सुंडी का प्रकोप होता है। इसमें बढ़ती शाखा का मुरझा जाना, बोकी या डोडी का गिरना या पंखड़ी नुमा बोकी का बनना इत्यादि लक्षण शामिल हैं। इसके नियंत्रण के लिए 100 से 125 मिलीलीटर फेनवेल्ड्रेट 20 EC प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. काम्बोज ने बताया कि नरमा की फसल 40 से 45 दिनों की होने पर 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से गुलाबी सुंडी की निगरानी के लिए लगाएं। 3 रातों में यदि 12 से 15 गुलाबी सुंडी के वयस्क ट्रैप होते हैं तो स्प्रे की आवश्यकता है। कपास की फसल में फूल बनने की शुरुआत होने पर गुलाबी सुंडी की निगरानी अवश्य करें। इसके लिए प्रति सप्ताह खेत के विभिन्न स्थानों में कम से कम 100 फूलों का निरीक्षण करें। गुलाबी सुंडी से प्रभावित फूल फिक्री नुमा अथवा गुलाब नुमा दिखाई देते हैं। ऐसे फूलों को खोलकर देखने पर उनके अंदर गुलाबी सुंडी पाई जाती है। खेत में या आसपास रखी गई पिछले साल की नरमा की लकड़ियों के टिंडे एवं पत्तों को झटका कर अलग कर दें एवं इकट्ठा हुए कचरे को नष्ट कर दें। इन लकड़ियों के टिंडों में गुलाबी सुंडी निवास करती है। जून में कपास की फसल में थ्रिप्स चूड़ा का प्रकोप शुरू हो जाता है। 60 दिनों से कम अवधि की फसल में थ्रिप्स संख्या यदि 30 थ्रिप्स प्रति 3 पत्ता मिले तो नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। हर सप्ताह खेत में कम से कम 100 फूलों का निरीक्षण करें किसान। नीम आधारित कीटनाशक छिड़कें। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर राजवीर गर्ग ने बताया कि कपास की शुरुआती अवस्था में ज्यादा जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से मित्र कीटों की संख्या भी कम हो जाती है। नरमा की फसल में 10 से 20% पौधों में बौकी बनने की शुरुआत होने पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप रोकने के लिए 1.0 लीटर नीम आधारित कीटनाशक निम्बी सीजन या अचूक को 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। कपास की फसल 60 दिनों की होने के बाद तथा गुलाबी सुंडी का प्रकोप फूलों में 5 से 10% होने पर छिड़काव इमामिक 3-बेंजोएट 5-ACG की 100 ग्राम मात्रा को 100 से 125 लीटर पानी की दर से प्रति एकड़ छिड़काव करें। अच्छी बारिश के बाद NPK का प्रयोग करें। कपास अनुभाग के अध्यक्ष डॉक्टर करमल सिंह मलिक ने बताया कि अच्छी बरसात के बाद ही यूरिया का 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। अगर बिजाई के समय कुछ नहीं डाला है तो 1 बैग यूरिया की जगह DAP डालें। अब अच्छी बरसात के बाद NPK का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो, जहां ड्रिप द्वारा सिंचाई की सुविधा है वहां पर घुलनशील उर्वरक 3 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि बारिश हो जाए या सिंचाई करनी पड़े तो प्रति एकड़ 1 बैग यूरिया का प्रयोग करें। साथ ही निराई गुड़ाई अवश्य करें ताकि खरपतवारों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। फव्वारा एवं टपका विधि से सिंचाई प्रतिदिन न करें। पत्ती मरोड़ रोग से ग्रस्त पौधे उखाड़ दें। जड़ गलन रोग से प्रभावित पौधों के आसपास के स्वस्थ पौधों में कार्बिडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर 400 से 500 मिलीलीटर जड़ों में डालें। बीमारी से सूखे हुए पौधों को उखाड़ दें, जिससे बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। फसल की लगातार निगरानी रखनी चाहिए वह पत्ती मरोड़ रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर दबा देना चाहिए।
2: दिल्ली पंजाब तक पहुंचाया 5 रंगों के तरबूज व चेरी टमाटर का स्वाद। पानीपत के राम प्रताप ने पुश्तैनी खेती को ऑर्गेनिक खेती का रूप दिया। पानीपत के सिवाह के रहने वाले प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा ने कृषि की दुनिया में नए आयाम स्थापित किए हैं। खेती को ऑर्गेनिक ढंग से किया है। अब पानीपत के 5 रंगों के तरबूज व चेरी टमाटर का स्वाद दिल्ली, पंजाब व नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, लेकिन पर्यावरण अनुकूल नहीं होने के कारण वह खेती का विस्तार नहीं कर सके। वह राष्ट्रपति सहित कई अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। राम प्रताप शर्मा ने बताया कि उनके पिता राधेश्याम शर्मा ने पिता और दादा की खेती संभाली थी। उन्होंने भी 17 साल की उम्र में 1989 में खेती को संभाल लिया। उस वक्त रेलवे लाइन के किनारे 14 एकड़ जमीन पर गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जा रही थी। उन्होंने 1982 में टमाटर, आलू, खीरा, तोरई, करेला, लौकी, कद्दू, प्याज, पेठा आदि सब्जियों की खेती को शुरू कर दिया। उन्होंने यूरिया आदि केमिकल का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दिया और सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। 2021 में थाईलैंड के बीच से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। राम प्रताप ने बताया कि 7 साल पहले उन्होंने थाईलैंड, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के हाइब्रिड बीजों से खेती का स्वरूप बदलना शुरू कर दिया था। 2019 में उन्होंने ताइवान के बीजों से चेरी टमाटर की खेती करना शुरू किया था, जो अब काफी बढ़ गई है। वह हर सप्ताह वह 1 क्विंटल चेरी टमाटर दिल्ली व 1 क्विंटल नोएडा व पंजाब के लुधियाना में भेज रहे हैं। 2021 में थाईलैंड के बीज से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। उसके बाद सन 2022 से अंदर से लाल के अलावा पीले, संतरी और नीले रंग के तरबूज की खेती

0: बिंदुओं पर काफी बारीकी से रिसर्च की थी। मानसून की पहली बारिश के बाद 15 जुलाई तक कर लें बाजरे की बिजाई। बिजाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई जरूर करें। बारिश के बाद से ही खेतों में बिजाई तेज हो गई है। कृषि विभाग ने जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून की पहली अच्छी बारिश के तुरंत बाद बाजरा की बिजाई की सलाह दी है। बिजाई से पहले बीज को फफूंद नाशक जैसे कार्बन डाइजम 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित जरूर कर लें। बिजाई सीड ड्रिल या पोरा विधि से करें। पौधों को बराबर धूप और हवा मिल सके इसके लिए बिजाई के 10 से 15 दिन बाद अगर पौधे बहुत पास पास उग गए हैं तो कमजोर पौधों को उखाड़ कर उनके बीज की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर कर लें। इससे बचे हुए पौधों को फैलने की पूरी तरह जगह मिलती है। बिजाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। यदि जरूरत हो तो बिजाई के तुरंत 38 घंटे भीतर इट्राजिन नामक दवा का छिड़काव भी किया जा सकता है। यूं तो बाजरा मुख्य रूप से वर्षा आधारित बारिश के पानी पर निर्भर फसल है और इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो फसल की 3 संवेदनशील अवस्थाओं में पानी देना बहुत जरूरी है। 3 सिंचाई करना आवश्यक। कृषि उपमंडल अधिकारी डॉक्टर अजय यादव ने बताया कि अगर जुलाई महीने में भी मानसून का साथ मिला और सामान्य बारिश हुई तो बाजरे का रकबा तय लक्ष्य को पार कर सकता है। इस समय पौधों में कल्ले फूट रहे होते हैं। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में करें। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन में करें। इस दौरान बालियों में दाना भर रहा होता है।
1: यह थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि संबंधित जानकारी है आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर है 7056413010। अब हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। स्वस्थ रहिए। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।
0: मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, hum safar zindagi ka. Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
0: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: की ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَسْتا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो इनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं, तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: जी।
1: तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है खून की, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रफ इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है, क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिन बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर रहता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम

0: स्पेशल या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाइयाँ अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
1: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
0: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है
1: जी।
0: जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
1: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
0: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है, और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये है आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं, तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी इसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू
1: सो मच।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वत्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने पस...

0: आना।
1: तुम जाओ, अंजू मैं यहीं ठहरता हूँ।
0: क्यों, उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो?
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो, मैं तो

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5। पेश करेंगे आरजे किरणी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपुरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। सभी दोस्तों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार और लेकर आई हूँ सरगम का एक और अंक। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म सिलसिला के गाने से, जिसे गाया है अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और म्यूजिक से सजाया है शिव हरी ने।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

अब आपके नजर है राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, जिसे अपने म्यूजिक से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारे।

लीजिए आप सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ओपी नायर का संगीतबद्ध गीत, जिसके बोल लिखे हैं SH बिहारी ने और फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

लीजिए, आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनजान ने और म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगली पेशकश है बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया गाना, जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने, और जिसके बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने, और फिल्म का नाम है चलते चलते।

कार्यक्रम का अगला नगमा है फिल्म फागुन से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, जिसको म्यूजिक से सजाया है ओपी नायर ने और उसके बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने।

अब आपके नजर है ये एक और नगमा जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है अजनबी और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसको म्यूजिक से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म हरे कृष्णा हरे रामा से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, जिसको गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, और अपने म्यूजिक से सजाया है आर डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही आज का सरगम कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है और अपना फीडबैक भेजते रहिए 7056413010 पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 5, पेश किया आरजे गिरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

हेलो, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आधे घंटे तक आप बने रहेंगे मेरे साथ और हम यह सफर तय करेंगे मुस्कुराते मुस्कुराते। लब पर जो आ जाए तराना अच्छा लगता है, गीत नया हो या हो पुराना अच्छा लगता है। मैं हूं रमेश मराठा, वेलकम।

जब कभी फरामोश किया था, बर्फ की चादर पे चलते चलते, गुजरते गुजरते इन्हीं राहों पे, जहां आज हमारी चाहतों के टुकड़े अब बिखर चुके हैं। जब कभी रिश्तों की अहमियत तुम समझोगे, तब तुम खामोशी से, चुपके से आना और देना मेरी दहलीज पे दस्तक। शायद हम अपनी भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा करें और जिए अपने अतीत के साथ, संभलते संभलते एक दूसरे को थामते हुए।

अपनी चाहतों की तरह तुम अक्सर कहा करते थे, मौसम आएंगे मौसम जाएंगे, पर काश कभी तुम लौट के आती, अपनी चुप्पी तोड़ लेती, मुझ पे एहसान फरमाती, अपने आगोश की पनाहों में मुझे रख लेती, फिर मोहब्बत करती चुपचाप।

अपना दर्द छिपाए बैठे हैं एक सदी से। मुझको कहां खबर थी कि तुम यूं खफा हो जाओगे और साथ निभाने का अहद भी तोड़ दोगे। तुम सामने होते हो पर हर पल ओझल हो जाते हो शबनमी बूंदों की तरह। क्या तुम्हें मालूम है ढूंढा है मैंने तुमको इस कायनात के जर्रे जर्रे में इन हवाओं में इन वीरानियों में खंडहरों में यहां इन बेनाम बस्तियों में इन पानियों की गहराइयों में। पर मिला बस एक लम्हा तुम्हारी याद का सिर्फ तुम्हारी याद का।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

0: सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।
1: जब कभी मेरे आंगन में पेड़ों की इन्हीं शाखों पे लचकती थी चांदनी, जब खुशनुमा मौसम के इन हसी लम्हों में तुम्हारा करीब आना, रुक जाना, उठ जाना, फिर ढल जाना, बिना कुछ कहे दूर जाकर मोहब्बत का इजहार करना।

मुझको अब न आरजू कोई न है कोई तमन्ना, बस तुम यूं ही मेरे ख्वाबों में आते रहो। यही एक हसरत लिए बरसों से भटक रहा हूं। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे मेल करिए ramesh.marathan@gmail.com। अब चाहेंगे आपसे इजाजत और छोड़ जाते हैं आप

जी हाँ श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ भारत सोपोरी और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और हम भी कोशिश करते हैं कि बात वही करें जो रखती हो आपसे सरोकार। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा और इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:43। श्रोताओं, अब समय हो चला है FM 90.0 MHz पर आप के पसंदीदा स्टेशन रेडियो विदस्ता के आज के खूबसूरत सफर को यहीं विराम देने का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। आज का दिन इतिहास के पन्नों में बहुत ही खास स्थान रखता है। आज ही के दिन यानी 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया गया था, जिसने हमारी आजादी की राह को मुकम्मल किया था। उसके साथ ही आज हम देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करते हैं, जिनका राष्ट्रीय निर्माण में बहुत बड़ा योगदान और अतुलनीय रहा है। इन्हीं गौरवशाली स्मृतियों के साथ अब वक्त है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले रेडियो वितस्ता के सभी चाहने वालों के लिए पेश है आज की समापन शायरी। और ये जो डिटेल्स हम आपके साथ साझा करते हैं, इसमें सहयोग है टीम रेडियो वितस्ता से कृष्णा और नैना का। आइए आपको सुनाता हूं आज की पंक्तियां जो हर दिन आपके लिए लाता हूं और आप सभी के लिए ये पंक्तियां समर्पित है। आज की पंक्तियां यूं है, इतिहास के पन्नों से सीखी है हमने वफा की दास्तां, इतिहास की पन्नों से सीखी है हमने वफा की दास्तां, सदा गूंजती रहे यादों में ये हसी महफिल ओ मका। चलो आज के इस सफर को यहीं पर थाम लेते हैं, कल फिर मिलने के वादे के साथ विदा लेता है रेडियो वितस्ता। कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ विदा लेते हैं आज रेडियो वितस्ता। ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां। और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल हफ्ते की शुरुआत सोमवार को 6 जुलाई 2026 को 5:58 पर हमारी सभा की शुरुआत होगी वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए सुविचार और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत और 7 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम एपिसोड 4। कल हमारे साथ होंगी डॉक्टर श्वेता शाह। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का सिलसिला एपिसोड 26। कल का शीर्षक होगा साहिब गिरी। इस कहानी को पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 फिल्मी किसे एपिसोड 2 कटी पतंग। हमने कल के लिए फिल्म चुनी है, इसके हम आपको गाने सुनाएंगे और इसके फिल्मी किसे भी सुनाएंगे, पेश करेंगे दीपक कश्यप। 10:00 होगा कार्यक्रम परिचर्चा एपिसोड 2, अनिल यादव होंगे हमारे साथ। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 बजे भक्ति संगीत और 6:30 शाम में गजल और 7 बजे होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 1, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 8:30 हर दिन के तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा और कल की कड़ी है धड़कने हैं उदास। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे। एक बार और हम आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से हृदय तल से आप सभी का शुक्र गुजार हैं हम और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पूरे दिन हमारे साथ हमारे प्रसारण के साथ रहते हैं और हमें खुशी है कि हम आपकी जिंदगी में कुछ पलों के लिए सुकून ले आते हैं। रेडियो वितस्ता से जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और आप सब स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।